0: जीवन मरण है जोर जोर न राज माल मन सूर
1: जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटे संसार
0: जस हाथ जोर कर विखे सोए नानक तुम नीच न कोए
1: राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल
0: धरती थाप रखी धर्म सात सवे जी जुगत के रंग तिन के नाम अनेक अनंत
1: कर्मी कर्मी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार
0: पंच परवान अदरी कर्म पवे निशान
1: चिपकाई उथे पाए नानक गया जापे जाए
0: खंड काय हो धर्म ज्ञान खंड काया।

0: अस्ति प्रभुते
1: कलंकं बिना निकलंकी स्वरूपे नमो राज राज स्वरं परम रूपे
0: नमो जोग जगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज जगेश्वरं परम वृद्धे
1: नमो शास्त्र पाणि नमो अस्त्र माणि नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
0: अपेक्षी अपरमी अपोगी अपोगते नमो जोग जगेश्वरं परम जुगते

0: मन माने नो रोग रोग नमस्त शनाने
1: नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंतर जंतरंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग
0: सर्वभरणासी नूपि रूपे समस्त निवासी
1: सदा सिद्धा बुद्धा ब्रित करता अदो उर्धर धंग गंग ओग हरता
0: परमेश्वर प्रोज पालं सदा सर्वदा सदाता दयालं
1: अशेदी अपेदी अनामंग कामंग समस्तो पराजी समस्त स्तामंग तेरा जोर चाचरी शंद
0: जले हैं तले हैं पीता भी है
1: प्रभु है अजू है अदेश है अपेश है पुचंग पयात शंद
0: देवादे नंदी स्वरूपे नो सर्वमान्य समस्त निदाने
1: नमस्वंग निनाथे नमस्वंग परमाथे नमस्वंग गंजे नमस्वंग पंजे
0: नमस्वंग पालनो सर्व देशे नो सर्व पेशे
1: नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो महा माहे
0: नमो प्रीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोके नमो शोक शोके
1: नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग
0: नमो परम तारंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग
1: नमो सर्व दृसंग नमो सर्व कृसंग नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे
0: नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे खजे भिजे समस्तंग प्रसजे
1: कृपालंग स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सदंग निवासी चरपट शंत व प्रसाद
0: अमृत धर्म खल जोगे चल भोगी
1: अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग लख कर्मंग
0: दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भानी सर्वंग माने
1: सर्वं प्राणंग सर्वं त्राणंग सर्वं भुक्ता सर्वं
0: सर्वं देवं सर्वं भेवं सर्वं काले सर्वं पाले
1: रुवाल शंत्वा प्रसाद
0: आद रूपनाद मूर्जोन पुरखा पार
1: सर्वमान तिरमान देव पेवाद उदार
0: सर्वकालक

0: बास क्यों बख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस पतायो
1: साच कहो सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो
0: काहुल पाहन पूर तरयो सिर काहुल लिंग करे लटकायो।

0: स्वरूप से अनुभव।
1: आप रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संग करो
0: दुष्टिते अटपटे अटपाता सकल मलेश करो रण काता
1: जे अस्तु तव सरनी पर तन कह दुष्ट दुख तव मरे
0: रख जवन पग पड़े।

0: कृपा दृष्ट तन जाय न हरहु ताके ताव तन कमो हरहु
1: रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष शाश शुभ सके न कोई
0: एक बार जिन तुम्हें सुपारा।

दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा एह बिनंती सुन प्रभ मेरे देह नाम करे अपने चेरे जपियो जिने अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो सतनाम

ऐसा नाम जप मन रंग नानक पाइये साध क्या संग। जे मार्ग के गन जाए न को सर का नाम हुआ संतोष सा जय पांडे मंद गुबार का नाम संगी डियारा। जहाँ पंथ तेरा कौन असियानू अर का नाम ते नाल पछानू। जय महा भ्यान तप्त बहु काम तेर के नाम की तुम ऊपर शाम। जहाँ त्रखा मन तुझ आ कर खै तैनान कर अमृत बरखै। अर्जना की बर्तन नाम समझना के मन विश्राम। अर का नाम दास की ओट अर के नाम दृजन कोट। हर जस करत संत दिन रात हर रुख सदक मात। अर्जन कै नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तां रंग रते रंग एकै। नानक जन कै बिरत बवेकै। हर का नाम जन को मुक्त युक्त हर के नाम जन को तृप्त भुक्त। हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जप का परे न भंग। हर का नाम जन की वड़ियाई हर के नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जप कृष्णाए बियोग। जन रात हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन के मालक जीना हर तन जन को आप प्रभ दीना। हर हर जन के ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते सुन समाध नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपहर का भक्त भक्त नहीं शपहर की भक्त मुक्त भाव करे। नानक जन संकेते तरे पार जाते वर को नाम काम तेन। हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रिद्ध वसै संत प्रताप दुर सब नसै। संत का संग वडभागी।

सेव करी इन्हीं की पावत, आन की सेव सुहात ना जी को, आगे फले इन्हीं को दियो, जग में जस और

आगे फला इन्ही को दियो, जग में जस और दियो सब पीको, मो ग्रह में मन ते तन ते सिर लाओ।